अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगात सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग अरगी पीप कुकर सत्कह अचल मूर्तन भव प्रकाश अमित उज कह जय खूब चिंदन इंद्राण शाहु शाहान गणिजय फिर भवन में ही सुनारा सुर नीत नीत मंडन कह सब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समत सतगुर आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर सुभा चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लेखा छोड़िया लेखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब ना दे आधारी नानक दास संत पाछा करियु राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया

राग गौड़ी दखनी विच ऋषभ धैवत कोमल अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार धैवत सुर वर्जित हैं। इस दी जाति औडव संपूर्ण वादी ऋषभ संवादी पंचम अते समा सवेर दा पहला पैर है। इस राग विच नाम मिले चले मैं नाल शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रिंसिपल शमशेर सिंह करीर।

विष्माद नाद विष्माद वेद विष्माद जीव विष्माद भेद विष्माद रूप विष्माद रंग विष्माद नागे फिरे जन विष्माद पौन विष्माद पानी विष्माद अग्नि खेड़े बिडानी विष्माद धरती विष्माद खानी विष्माद साध लगे प्राणी विष्माद संजोग विष्माद वजोग विष्माद

वह करके अर्थात समुद्र की मत कह हो काट बनास्पति सगरी दिख गए हो के लेखन खाज बने हो सार सुता पकता करके जुग कोट गणेश के हाथ रखे हो काल कृपा

गया अलप मत थोरी तुम आपन विरत रखाओ तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा तुम्हारी

ना खाली ना रहे। आओ सारे मानक दे दर ते हाजिया लगे। बाबा जी वचन कर दे सन जरा गुरु नानक दे दर खाली चला जाएगा वो सारा खाली रहेगा। आओ चोरी करो ते सारे हाजिया। कीर्तन हो रहे कीर्तन में प्यार वाले कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे। टेपा लगी कुछ बुद्धि अनुसार जो सेवक बोली जाता है वो रिकॉर्ड हो जाए। तो छोटी टेप है गुरु नानक पातशाह के दरबार भी वही सारी टेप लगी हुई है। जो भी गुरु कुमारी भाई इतने आ जिस पाऊना आ रिकॉर्ड होया जाता है।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे समेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, शांत सहज सुख खिन में उपजे।

कूड पर जा कूड सा संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार कूड सोना कूड कूड पहन हार कूड काया कूड कपड़ कूड रूप पार कूड मिया कूड बीबी का

एक शब्द हुण मैं तुहाडे सामने पेश कर लगा, बहुमुल्ला शब्द है। इस शब्द की कोई कीमत नहीं दी जा सकती। गुरु साहब सानू इस शब्द च हुण यह समझाण लगे हन, कुछ एक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ एक साज जो हन वह सानू इंट्रोड्यूस करन लगे हन। उन्होंने पता है हर बंदा ना सितार सीख सकता है, हर बंदा ना तबला सीख सकता है, हर बंदा ना राग सीख सकता, बड़ी मुश्किल गल है राग सीखना, हर बंदा ना हारमोनियम सीख सकता है, हर बंदे नूं कीर्तन करना नहीं आ सकता। लेकिन मैं इस शब्द नूं पढ़ के दंग होया, हैरान होया, आनंद आया कि गुरु महाराज ने कहा यह साज नहीं भी आंदे तो कोई गल नहीं, असल साज ही और हैं, वह आने चाहिए हैं। प्यार नाल सुनो शब्द, कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज का यह महान रब्बी कलाम है, कहते हैं वाजा मत, जो अच्छी मत है ना वही असल वाजा है। इंटलैक्ट इज द रियल इंस्ट्रूमेंट, इंटलैक्ट विजडम, कहते हैं जो मत है ना सो जी अकल, यही असल वाजा है, यह वाजा होना चाहिए, बारला वाजा ना भी हो। अगली गल, पखावज भाव, पखावज कहते हैं तबले, कहते हैं वाहगुरु का भाव ही असल तबला है, जिस दे कोल ए वाजा ते तबला आ गया कहते हैं होए आनंद सदा मन चाओ, उस इंसान की जिंदगी हमेशा आनंद रहेगा तो चा खिड़ा बनिया रहेगा। तो सात संगत ए वाजे ते बार बार ही रह जाते हैं, ये अंदर ते पहुंचते नहीं हैं, कई दफा इन्हों बजाने वाले टोटली नॉन म्यूजिकल रह जाते हैं कई दफा। लेकिन गुरु साहब कहते हैं मत का वाजा अते वाहगुरु के प्रेम का जो तबला है ये तुहाडे पास है, ते असल संगीत तुहाडे पास है। कहते हैं अगे एहा भगत एहो तपताओ, एहो असल भक्ति है, एहो असल तप है कि गुरु दी मत दा वाजा अते वाहगुरु दे भाव दा प्रेम दा जो है वो तबला तुहाडे पास होवे, जिस दे पास ए साज हन ना अंदर ले, क्योंकि मत भी अंदर है ते भाव भी अंदर है, जिस दे पास ए वाजा ते तबला है असल साज ते उस दे कोल हन, असल संगीतकार म्यूजिशियन ओ है। अगली गल कहते हैं इत रंग नाचो रख रख पाओ, जिंदगी दे रस्ते होते इस रंग दे विच वाहिगुरु दी मत अते वाहिगुरु दे पाओ दे विच कहते हैं पैर रख रख के नचदे हुए जीवन दे उते चले। अगली गल कहते हैं पूरे ताल जाने साला, पूरे ताल दा मतलब के ताल दी समझ, रिदम दी समझ, प्रकशन दी समझ, कहते हैं असल रिदमिक, असल तबला प्लेयर, असल ड्रमर ते ओ इंसान है जेड़ा वाहिगुरु दी सिफत सला जानदा है। पूरे ताल असल ते तार ओ ताल ओ पूर सकदा है जिसनू वाहिगुरु की सिफत सला आंदी है, होर नचना खुशिया मनमा, बाकी बारला सारा नचना टपना जो संगीत है ये तो कहते हैं एक मन की गल है, मन दे तल ते है, इस तो अगे नहीं। अगे कहते हैं सत संतोख वजह दोए ताल, इथे ताल का अर्थ है छैणे। गुरु महाराज कहते हैं जिस इंसान दे पास सत है, सत का अर्थ है परोपकारी सुभाव, सेवा करनी, केयरिंग एंड शेयरिंग। गुरु साहब कहते पास जिस दे पास केयरिंग एंड शेयरिंग एंड कंटेंटमेंट, सत संतोख कहते हैं उस दी जिंदगी दे विच दो छैणे वज रहे हैं। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल, वाजा का अर्थ है पैरां दे विच जिहड़ियां झांझां घुंगरू। कहते हैं वाहिगुरु नूं निहारना उस दे दर्शन करने कुदरत दे विचों ही असल पैरां दे विच झांझना है, यानी ये अंदरले साज उन्होंने सानू दिते हैं। अगे कहते हैं राग नाद नहीं दूजा भाव, रब तो अलावा होर कोई प्यार ना रखना हिरदे दे विच ही असल राग है। जिस बंदे दे अंदर ते नफरत है, ड्यूअलिटी है, लेकिन वह कहता मैनू राग बड़े आंदे हैं, बाबा जी कहते कोई राग रोग नहीं आ, असल राग ते ए है कि वाहिगुरु तो अलावा होर को अंदर प्यार ना होवे, ए है असल राग। राग नाद नहीं दूजा पाओ, ए तरंग नाचो रख रख पाओ, इस रंग दे विच जिंदगी नूं जो है रंगो अते जिंदगी दे रस्ते दे उते जीवन दे मार्ग दे उते बाबा जी कहंदे हन नचदे हुए चलो, कुटदे हुए चलो। अगली पंक्ति, पाओ फेरी होवे मन चीत, जो डांस करते हैं वह फेरियां लेंदे हैं, सर्कलिंग करते हैं। गुरु साहब कहंदे हन मेक यूर माइंड सर्कल अराउंड वाहिगुरु, अपने मन नूं वाहिगुरु दे आले दुआले पहुंचतियां दिओ। कहिंदे नें भाओ फेरी, वाहिगुरु दा भाओ ही असल फेरी होवे, नाच दी डांस दी होवे मन चीत, बहिंदियां उठदियां नीता नीत। वे कहिंदे हन तुसीं देखिया होएगा कथक डांस दे विच कई दफा कि जो नृत्यकारी करते हैं, जो डांसर होंदे हन, वह कदे घुमाटणियां लैंदे हन, कई किस्म दियां मूवमेंट्स करदे हन, कई दफा वह अचानक जमीन उत्ते लेट जांदे हन। बाबा जी कहिंदे हन लेटन लेट जाने तन स्वा, ए समझ नूं समझना कि एक दिन इस तन ने हमेशा लई सुआह होके लेट जाना है, असल लेटना है, बाहरले इस लेटन नूं छड्डो, यानी जिसने ए लेटना नहीं सिखिया बाहरला लेटना जो डांस दा वो व्यर्थ है, बेकार है।
लेटन लेट जाने तन सुहा इत रंग नाचो रख रख पाओ। अखीरलियां पंक्तियां बाबा जी कहने सिख सभा दिखिया का भाव। आ बहुत समझण वाली गल कहंदे हन सिखां दी सभा सिर्फ ओइयो हुंदी है जिथे दिखिया दा भाव होवे। दिखिया कहंदे हन गुरु दे उपदेश नूं, भाव कहंदे हन इंटरेस्ट नूं, प्यार नूं। कहंदे जिथे सिख गुरु दी दिखिया, गुरु दा उपदेश सुनन दे प्यार दे नाल जुड़े हन ओइयो असल सभा है। अदरवाइज कोई सभा नहीं, बाकी क्राउड हुंदा। सिख सभा दिखिया का भाव, जिथे सिख दीख्या दे वास्ते, दीक्षित होण दे वास्ते, सिखण दे वास्ते, एजुकेशन लैण दे वास्ते, ग्रो होण दे वास्ते, डिवेलपमेंट दे वास्ते इकट्ठे हुंदे हन, कहिंदे हन ओइयो असल सभा है। सिख सभा दीख्या का भाव, गुरमुख सुनना साचा नाम। गुरमुख दे अंदर ए शौक होवे सच्चे नाम नूं सुनन दा। अखीर च कहिंदे हन नानक आखण वेरा वेर, वाहिगुरु दा नाम हिरदे च हमेशा वार वार वार वार लई जाणा। कहिंदे हन इत रंग नाचो रख रख पैर। ऐ जग्यासुओ, ऐ गुरसिखो, जीवन नूं इक डांस बना लो अते सारी जिंदगी जो है वो जिंदगी दे मार्ग उते डांस करते चलो, डांस करते चलो। कोई गल नहीं जे तुहानूं बाहर लावाजा नहीं बजाना आता, कोई गल नहीं अगर तुहानूं बाहर तबला बजाना नहीं आता, कोई गल नहीं अगर बाहर तुसीं घुंगरू उते पैरां झांझणा पा के जो डांस नहीं कर सकते। बाबा जी ने अज दे इस शब्द दे विच जो असीं सुनिया है, होर किस्म दे साज सानूं जो हन इंट्रोड्यूस कीते हन, होर किस्म दे साज सानूं बख्शे हन। कहिंदे हन अगर ए साज तुसीं जीवन च लायाओ ते तुहाडा जीवन संगीत बन जाएगा, तुहाडा जीवन एक नृत्यकारी बन जाएगा। मैं फिर दोहरा दिया, मत दा वाजा, वाहिगुरु दे पाओ दा तबला अते सिफत सलाह दे घुंगरू। हजूर कहंदे हन सत संतोख दे ताल अते पैरां दियां जो झांझरां हन वाहिगुरु नूं निहारना। है जी, अगली गल कहंदे हन वाहिगुरु तों अलावा होर कोई प्यार ना रखना ही असल राग है। इस रंग दे विच नचो ते डांस भी उन्हें दस्या है कि वाहिगुरु दे सिमरन दे आले दुआले मन नूं कमाउणा ही असल फेरी है। तन नूं ए जानना कि एक दिन इसने सवां हो जाना ही असल लेटना है। तो इस रंग दे विच अपने जीवन नूं रंगो, जिंदगी नूं इस तरह संगीतक बनाओ, जिंदगी नूं इस तरह एक नृत्यकारी दे नाल करो। तो इन्हां शब्दां नूं असीं सुणीए। बाबा जी ने अंदरले साज दसे हन, अंदरला नाच दसिया है, अंदरली नृत्यकारी दसी है। अते जे किसी दे जीवन च ए नहीं साज हन, ओ बाहर जिन्ने मर्जी साज बजाई जाए ना ओ सजंदा है ते ना ही ओ कीर्तनीय है। क्योंकि गुरु महाराज ने कीर्तनिया दे वास्ते भी एक गल कही है, वह भी मैं तुहानूं सुनानी चाहना हाँ। कहिंदे हन हजूर, कहिंदे हन पलो पलो रे कीर्तनिया। असल कीर्तनिया ते ओ भला है, पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुण गाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। जेड़ा माया दे ना झूठे तंदियां नूं छोड़ दे, जिस दी विरती दे विचों, माया दी सत्संग जरूरत सारिआं नूं, कीर्तने नूं भी जरूरत है, उसने भी खाना है, उसने भी जीना है। लेकिन अगर उस दी विरती सिर्फ माया दे वास्ते कीर्तन करदी है, कीर्तन दा उसके अंदर कोई इश्क नहीं है, बाणी उसके जीवन का आधार नहीं है, ते हजूर कहंदे ना कीर्तनिया नहीं है। पलो पलो रे कीर्तनिया, राम रमा रामा गुनगाओ, छोड़ माया के तंद सुआओ। अगे चल के कहंदे हन कि असल कीर्तनिया ते ओ हुंदा है, पंच बचित्र करे संतोखा, पंच बचित्र करे संतोखा, सात सुरा लै चाले। कहंदे हन पंज जो बाजे हन, काम क्रोध लो मोहंकार, पंच बचित्र करे संतोखा, पंज किस्म दे जो धार्मिक गुण हन, सत संतोख दया धर्म धीरज, इन्हां नूं अपने बाजे बनाए। संतोखा सात सुरा लै चाले, बाजा माण तान। कहंदे हन माण नूं तजना ही उसका असल वाजा होवे, ताना पाओ ना बीगा काले।

सावा नित खड़ी मुझो बनबाली राम राजी तार गुर हर मार जाली मेरे मंत्र नाम धार है खूनी जाली जन्नान सतगुर मेल हर मिलिया बनवाली सुख मैला सत श्री पद यार से देखो

सद्दंग ज्ञान सद्दंग वेद सद्दंग ब्राह्मणे खत्री सद्दंग सूर सद्दंग शूद्र सद्दंग प्राकृते सर्व सद्दंग एक सद्दंग एक को जाने देव नानक तंका दास सोई निरंजन दे एक सद्दंग सर्व देवा दे।

0: दयाल कृपा करता साई काका ऐसी सोच से रचा करे विष्णु हुकुम ना ऐसी हुकुम ने प्रवानता खस में का मैल पाए सी खस में पाए सो करे मन दया सो बल पाए सी दान हृदय पैदा जाए सी
1: कोई गावे रागी ना दिवे दिवो।

अतिरादा समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे है। आई साहब आई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ीक की थी और जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गया। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲੇਟ ਗਿਆ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕੀ ਤੱਕਿਆ ਰਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟੀ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਰਾਣੀਏ ਉਠ। ਰਾਣੀ ਉੱਠੀ ਰਾਜਨ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ जे मैं सच दसदी हां ता जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग भी जांदी महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीं होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी है तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना ही गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी ए प्यार है। राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राती किथे गई सी। जे झूठ बोलदी आ तां पति परमेश्वर है। स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति है। जे सच बोलदी आ तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता।

महारानी है जो आज सत्संग विच आनंद आया है ओ राज गद्दी ते बह के भी जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लई फिर प्यारी सत्संगत राड़े राणी दे उद्दम नाल फिर राजा सत्संगी बन गया स्त्री नु वाहिगुरु ने बड़ा बल दिता है कई तो इन कहते अबला है पर मैं तो कहना आदमी नालो स्त्री ज्यादा ताकत ज्यादा बल है तुसी तक लो ना स्त्री दो काराबाद कर दी स्त्री जो है ए दो कर अपने पिता का घर भी आबाद कर दी है ते अपने सहुरिया का घर आदमी इको घर ही आबाद करता है अगो तेरी वाहिगुरु विचार की बात है ए अंदर बल ज्यादा होया ना ताई बाबे ने स्त्री नु बड़ा माण बख्श स्त्री दे हाथ विच सब कुछ है ए पति नु जैसा चाहे बना सकदी एदे अंदर ताकत पर थोड़ा जिहा तहमल चाहिदा थोड़ी जी विचार चाहिदी है थोड़ा जिहा सत्कार चाहिदा है तलखी विच नहीं आना चाहिदा जे पति गलती करदा है प्यार नाल समझाना समझदे समझिया तो पशु ही समझ आते आखो श्री भाई सुनदे सुनदे इंसान है तो मेरे कहने का मकसद स्त्री के अंदर वाहिगुरु ने बड़ा बल रखे तक लो राणी तारा ने अपने सत्संग दे शक्ति दे नाल राजे हरिश्चंद्र नू सत्संगी बनाया सत्संगी नहीं बनाया राजे नू धर्मी बनाया राजा हरिश्चंद्र बड़ा धर्मी राजा है ये वस्तु कितों मिली तेरी सात संगत ए सत्संग विचो मिली नाम विचो मिली तो आओ तेरी सात संगत आप भी धन हो जो ओ सत्संग विच आप सारे जुड़े हो अज मैं तो यह समझदा भी सारा दिन ही तुसी सत्संग की अमृत वेले तो लै के अज सारा दिन नहीं वह ए है गुरु की बख्शिश ते तुहाडा प्यार जिस प्यार दे बूटे नू मालिक ने मेरा दे फल लाए अमृत वेले भी कीर्तन गुरुद्वारे भी कीर्तन ते इधर सार तारा सिंह जी बच्ची जी तो सारे परिवार नू बाबा जी ने प्रेरिया भी घर सत्संग होना चाहिए कीर्तन हो जाए बड़ा महत्व है जिस घर गंदे जरासीम हो जाए ना ज्यादा तो बीमारी पैण का खतरा हो जाता फिर असि की करते हैं DDT छिड़कते हैं ता जो जरासीम मर जाते बीमारी तू बच जाते ते जिस घर दुख कलेश आ जान बाबा जी बचन करते सन उथे कीर्तन हो गया खो श्री वाहेगुरु बाणी का अमृत छिड़को नाम रूपी अमृत छिड़कोगे तो फिर की होगा नस वजो किल विखो करता इथे गुरु आ जा तो इन्हों बच्चिया ने बड़ा उद्यम किया बड़ी गुरु दी मेहर यंग हन दोवे पर मैं तो कहांगा जवानी सफल नहीं तो जवानी मस्तानी होंगी जवानी एक ऐसा मोड़ है चंगे पासे तो तुरना ही नहीं ना चंगी गल तो करनी ही नहीं ना किसे गुरमुख ने लिखा भी एक जवानी दूजा धन पले फिर साई की मेहर हो सीधा चले नहीं तो डिंगा ही डिंगा तुरदा जाता है तो वह नौजवान बच्चे जो रोज आके गुरुद्वार जुड़ते हैं तो इन्होंने बच्चिया ने उद्यम किया है इन्हों का उद्यम सफल सत्संग कराया है गुरु की बख्शिश प्राप्त की है फिर इन्होंने उद्यम नाल आप सारे गुरु नाल जुड़े हाँ यह भी बड़ा पुण्य बाबा जी वचन करते सन किसी गुरु नाल जोड़ देना इस तू वा पुन कोई नहीं है किसी तोड़ देना इस तू वा पाप कोई नहीं तो इस परिवार ने जो कालना काली है तो गुरु बाबा बख्शिश करे आप अरदास करनी है इन्हों बच्चिया के सिर ते गुरु सदा मेहर प्रयात राज जोग भक्ति शक्ति सारिया दातां गुरु बख्शे इना दे उद्दम नाल आपां जुड़े हां सानू भी गुरु आप दे चरणा नाल जोड़ी रखे ते नाम बाणी दी दात
ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉੱਚਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ। ਤੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਾਰਨਾ ਫਿਰ ਪੜ ਲਈਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਾਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਰਾਤੀ ਜਾਏ ਸੁਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਸੀ।

आनंद साहब का पाठ करके कीर्तन भी समाप्त नहीं, अरदास होवेगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद दी देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वो भी प्रवान करनी। तो आओ हम आनंद साहब का पाठ सारे मिलके करिए। गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई भाई साहब जी जिन्हां नूं आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शे खजाने विचों सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द दा आदर करदे हैं, कीर्तन भेट गाउण अरदास कराउंदे हैं। अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो, कारोबार च वादे बख्शो, सिखी जीवन सत्संग दी दात बख्शो।

जयश्री जयंत श्री आदि के नाम नाल संबोधित श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित जयत श्री ही है। बड़े मनोरंजक अते कठिन राग में शुद्धता सहित महान गायक ही गा सकते हैं। जयत श्री का प्रभाव सुख अते खुशी देने वाला है। खुशी लैण लई मन दे आलसिया उगलाना वाला सुभा छड हीरे विच रतन नाम नू वसा के गुरु बख्शिश लैनी पैंदी है। इस राग नू मनोरंजक बनाउण लई इस दे स्वरूप विच ईशव धैवत कोमल मध्यम तीबर बाकी स्वर शुद्ध लगाए जांदे हन। आरोह विच ऋषवत धैवत वर्जित हन। इस दा वादी सुर गंधार अते संवादी निषाद है। एह राग दिन दे चौथे पहर गाया जांदा है। राग जैतसरी विच दो शब्दां दा कीर्तन सरवण करो। पहला शब्द श्री गुरु अर्जन देव जी दी रचना है। इस नू गा रहे हन बीबी नवेदिता कौर जी। शब्द तुक है कोई जन हर सियो देवै जोर अते दूजा शब्द गुरु रामदास जी दी रचना हर हर सिमरो आगम अपारा भाई महेंद्र सिंह जी सागर प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला शब्द कोई जन हर सिंह देवै जोर।

मैं अजिहे सुख तो की लेना है जेड़ा सुख नालो वधेरे दुख लेके आई जा रहा है। सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो ना मांगया भावे। वो सुख मेनू अच्छा नहीं लगता जेड़ा वधेरे दुख लेके आ रहा है। ते गुरु साहब भी अपनी बाणी दी इस पंक्ति दे विच ए कहंदे ने, ऐ संतो ऐ ऐसे पुरुषों जिन्हां दे पास के इनसाइट है, ऐसे महापुरुषों ऐसे सतपुरुषों मेरे उत्ते बख्शिश करो। कोई मैनू अजिहा सुख दसो, सो सुख मोको संत बतावो। कोई मैनू ऐसी कंफर्ट दसो जिस दे नाल तृष्णा बूझे मन तृप्तावो। आओ सारे रल के प्यार दे नाल इस पंक्ति नू गाइए। अगां फिर अज दी इस विचार चों असी गुरबाणी दे व्यू पॉइंट दे विचों ए लभीए कि सुख किस तरह मिलता है। आओ सारे रल के गाइए।

तुहाडे सामने एक फरीद साहब जी दा मैं श्लोक रखदा हां, जिस दे विच फरीद साहब साडी जिंदगी दी जो हालत है उस दा जिक्र करदे हन। फरीद साहब डिस्क्राइब करदे हन कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग। कहंदे हन

अखी कुदरत अखां दे नाल कुदरत दे दीदार करो, कन्नी बाणी कन्ना दे नाल उस दे विस्माद नाद नूं श्रवण करो, मुख आखण सचनाम ते जबान तो फिर उसकी प्रशंसा करो। सो सारे सारे शब्द दी जो विचार दा सिट्टा ए निकलदा है, गुरु साहब ने कहा है अनेकां किस्म दे नाल इंसान अपने आप नूं सुखी होण दी जो कोशिश करदे हन, लेकिन सारे शब्द दी जो विचार इत्थे टिकी रही है कि किसे तरह भी मन सुहेला नहीं हुंदा। गुरु साहब फिर अगां चल के हुण दसदे हन, आओ अगली पंक्ति वल नूं वधीए कि सुहेला सुखी किस तरह हुंदा है। ओ कहंदे हन असी अपनी जिंदगी दे विच सोचदे हां कि साडे पास धन आए ते असी सुहेले हो जावांगे, सुखी हो जावांगे, लेकिन तजर्बियां तो यह पता लगता है कि साडा ए धन पदार्थ से बहुत ज्यादा गिनती इकट्ठा कर सकता है लेकिन सुख नहीं इकट्ठा करता। फिर वो केड़ा धन सानू चाहिए जिस दे नाल असी सुख भी हासिल कर सकी, उसका अगली पंक्ति जिक्र करते हैं। कहते हैं

तो कह देता है जगत निर्धन है, गरीब है, वाहेगुरु दे नाम तो बिना, वो वाहेगुरु वाले जीवन तो बिना इंसान गरीब ही रहिंदा है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। जिस दे जीवन दे विच वाहेगुरु नहीं है वो गरीब है। गुरु अमरदास जी महाराज ने भी इस विचार की प्रोढ़ता की है। वो भी कहते हैं

फिर कहते हैं इत तन पै भुख लखी जिन्हां दे पल्ले ए तन आ जांदा है अकाल पुरख वाहिगुरु की सिफत सलाह दा अकाल पुरख वाहिगुरु जिन्हां दे हिरदे दे विच आ जांदा है जिन्हां दी सुरत दे विच आ जांदा है जिन्हां दे वचनां दे विच आ जांदा है जिन्हां दे जीवन दे विच आ जांदा है कहिंदे हन उन्हां दे मुतलक इत तन पै भुख लथी सुख वसिया मन आए उन्हां नूं बाहर सुख इकट्ठा नहीं करना पैंदा सुख उन्हां दे अंदर आ जांदा है साडा कीर्तन इत्थों शुरू होया सी एक सवाल तों कि सौ सुख मोको संत बतावे ओ संतो ओ मैनूं सुख दसो किस तरह हासिल हुंदा है तो उन्हां ने कहा सुख तुहाडे आत्मा दे अंदर तुहाडे अपने अंदर आ जांदा है सुख बाहर नहीं है कंफर्ट हैज नथिंग टू डू विद एक्सटर्नल पोजेशन मटीरियल इट इज प्योरली ए स्टेट ऑफ माइंड

दिन रात माया नु ही तरसदा रहिंदा है। मन मुख जगत निर्धन है माया नु बिन लाए, बिलाट करदा है तड़पदा है अगे अन दिन फिरदा सदा रहे, दिन रात फिरदा रहिंदा है।

फिर इसनु मैं दोहरा दें, बहुत तत् दी गल कही है। अगर असी संसार तक आ विचार पहुंचा सकिए कि गुरु अमरदास जी महाराज ने की तत् कढ़िया है, सुख किस तरह मिलता है, तो साड़ी सबना दी जिंदगी दी जो अंदरली अवस्था है वह बदल सकती है। कहते हैं श्लोक महला तीजा, इस जग में संती तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया आए, सतगुर सच दृढ़ाया, सतगुरु सानू झूठ फॉल्स फेक पैरिशेबल नालों कट के तत दे नाल रियालिटी दे नाल जोड़ देंदे हैं, रियालिटी दिखा देंदे हैं। वो रियालिटी जिथे कोई गरीबी नहीं है, जिथे कोई दुख नहीं है, जिथे कोई मौत नहीं है, उस दे मतलक जिन्होंने उस रियालिटी नू पालिया हासिल किया, उन्होंने कहा ना वो मरता ना हम डरिया, ना वो मरता ना हम डरिया, ना वो बिन से ना हम कड़िया, ना उस भूख ना हमको भूखे, ना उस दुख ना हमको दुख। ऐ अवस्था बनती है जिन्होंने सच नू देखिया है, तत् नू देखिया है। उन्होंने मतलब ये क्या है, गुरुमुख अंतर सहज है, उन्हां दे अंदर टिकाओ ही बनिया रहिंदा है, बाहरली कोई भी टर्मोइल उन्हां दे अंदर ले टिकाओ नूं जो है वो भंग नहीं कर सकते। गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, जिथे ऊंग ना भुख है, हर अमृत नाम सुखवास, जिथे दुख सुख व्यापत नहीं, जिथे आत्म राम प्रकाश। गुरु साहब ओ मन दी अवस्था सानू दिंदे हन, कहंदे हन इस जग में संती तन खटिया, जिन्हां सतगुर मिलिया आए, सतगुरु सच दृढ़ाया, इस तन की कीमत कहीं न जाए, इत तन पै भुख लथी सुख वस्या मन आए, लेकिन जिना को तुर लिखिया तिनी तिनी पाया आए। बाकी साडे वर्गियां दी जो दशा है ओ ते ए क्या है, मनमुख जगत निर्धन है। मनमुखां दा जो मन दे पिछे ही चलदे हन, जेड़े नित नित खुशियां मन करे, जेड़े दिन रात मन दियां खुशियां दे पिछे पै रहंदे हन।

सवाल सी सो सुख मोको संत बतावो, ऐ संतो ओ ढंग कोई दसो, ओ कोई रस्ता दसो जिस दे नाल मेनू सच्ची जो सच्चा सुख है आत्मा दा सुख है ओ मिल जाए, अंदरली मेरी तृष्णा दी जो अग है ओ बुझ जाए ते मेरे मन नू संतोख आ जाए। इस दा भाव के अंदर संतोख नहीं है, चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावन लेफ, ए हमारा जीवना तू साहिब सच्चे वे, ए साडी हालत है। चिंतित ही दिस है सब कोई, इस तरह दा साडा मनुखी समाज दा जीवन है। तो मनुखी समाज सुख लभदा है, हजूर कहंदे हन ओ कोई रस्ता दसो जिस तो सानू सुख मिले। आओ इस दे जवाब दे विच असी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नू भी